0: निश्चित अनुभव करेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Gefahres Quality. बन सकते जितने वारिस क्वालिटी भले तो चार स्थान और भी है उसकी बात नहीं करते लेकिन कर्नाटक के धरनी से वारिस बहुत निकल सकते सब बजाना निकाल के दिखाना है अच्छी अच्छी है बाप दादा की नजर पड़ती है लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव सुना पांडव बहुत निकल सकते बाप दादा को कोने कोने में याद आते सारा यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते सेवा में लग गए पर्सनल सेवा

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सकते, पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा, उठाओ दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। कि पहले आप निकालो, दादियां आएंगी, कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएंगी। जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको जाना। टीचर्स वारिस क्वालिटी कैसे निकाली जाती।

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हैं। हाँ हो नहीं है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं लाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा लाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र बच्चे,
2: बेफिक्र
1: बाप दादा,
2: बाप दादा
1: सदा ही बेफिक्र बच्चे करो। बेफिक्र बच्चे
3: फिक्र का है था पापा बैठो।
1: कारण क्या है बेफिक्र क्यों है?
2: कल क्या है ये फिक्र क्यों है?
1: क्यों कहे
2: दिल बड़ी है?
4: बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
1: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
3: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
5: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा, बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे, बड़ी बड़ी बाकी आपको महसूस बाकी मिलेगी और साथ साथ ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ प्यार है ना बहुत, तो बाकी के साथ साथ अमृत भी तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा। जैसे चित्रों में दिखाती है ना इन्होंने श्री कृष्ण दिखा दिया, जब तूफान आया पानी भर गया तो क्या हुआ, सांप छत्र छाया बन गया, उन्होंने तो स्थूल बात दिखा दी लेकिन वास्तव में है रूहानी बात। तो जो रिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी छत्र छाया बन जाए। करके देखो क्यों कर ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे करने लग जाती है।

Jacoby. Che saluto.

morceau, Annie.

Yes.

चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय किस समय अचानक

ऐसे समय के

0: Ça, c'est vrai, Yavani, toi, là. Va, Karam, toi, là, mais c'est vrai, Kardéo. Où ce qui prapti? Atmak, Kushi, Milti. Tu check, Karam.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आजकल परमात्मा भी सैंपल देखने चाहते सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बनाया, रूप में कौन मूरत देखने चाहते। तो कर्म से विशेष संयोग

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ちょっと。

Desisto.

Hechizo un copo y guardar.

Sa se va co. शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

먹 있음.

अभी आवश्यकता। सकाश देने की ज्यादा इस सेवा में मन को बिजी रखो। तो माया जीत विजय आत्मा बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइट सीन है। साइट सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे में ये परिवर्तन देखने जाते हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक। तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे। तो वर्क मिला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहा, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा। जो चाहते हैं उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना। जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
4: तो बहुत बेला भी जाना पड़ेगा
3: जी,
4: बहुत लोग का निमंत्रण होता है पीछे तो सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
3: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी है। बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय परमान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें, अचानक अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम हो गए या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट बिना स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गए हैं। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। ऐसे समय
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

아주.

amica. Judy, penduro. Anche a che sa.

Mátame. Puchinero. Just

sick.

ser Juani. Y son seis meses.

exercise sharir ko tundrast rakhti hai. Aise ye exercise

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Mr. Jesse, get that.

we get

करने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से

0: समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती है। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। और बाप को भी हर बच्चा प्यार है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यारा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: धरनी पर बैठना ये तपस्या की निशानी। Yeah.

0: आवश्यक है कोई भी कार्य में। हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वो मर रहा है भय आपको आ रहा है। निर्भय ठीक है, उसको शांति का सहयोग उस आत्मा में रैम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं हो, भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकती है, भय का बहुत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है जो अनेक प्रकार के भय है। अपने कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब का निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो सदा साफ दिल सच्चे दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल सच्चे दिल तो साहेब राजी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुष।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah, baby.

0: अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो शिवा नहीं, वो स्वार्थ है शिवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तब सेवा में डिस्टर्बन होती सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी, चारों और attention।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ समझे। बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी फरमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना, ओके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करें। अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर जमा हुए तो कल 10 घंटे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा का, अभी ढूले बोल नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहती है क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषारत में आगे बढ़ते। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही अमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता भराना है, समझा। दिल शिकस्त तो नहीं होंगे, फिर बाबू को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बड़े बड़े पत्र लिखने शुरू कर देंगे, sound.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: लिए आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रिस्पान में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में हद के संस्कारों में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है और है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का पाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

No hay.

Que bordeca.

बच्चे के लिए क्या चाहता है।

course.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसकी violento. Y el patata que lleva pasó.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Fish.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ चार अपने तरफ है, तो चार को नहीं देख।

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्वपरिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्वपरिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, पता है, पता है। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहते हैं स्वपरिवार से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं पन से मरना है। तो मरना भी इस जन्म राज भाग्य में जीना है, तो मंजूर है, मंजूर है टीचर्स। तो बाप दादा यही देखने चाहिए थे, समझा?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा, आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवेपन की, कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक। आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय लाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगा हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: उसका

ऐसा

0: स्थिति भिन्न भिन्न नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों
2: चलते लेकिन
1: समय का चाहिए, जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे। समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे तो त्रेता युग ही बनेंगे, तो कोई नहीं हाथ उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते, अगर बहुत समय का जमा खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सकते

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाए क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके, अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृद्ध ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता, कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sasai sekarang.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है

0: वो तो नहीं पड़ेंगे। और खुशनुमा चेहरा, चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा, जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिले। तो आज होली की दिल खुश मिठाई है, खुशी सबने खाई। सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sp

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sam.

Ciao.

sentido, ¿verdad?

行。

Nathan.

Тебе.

विश्वसेवको सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में सेवा भी

विकास करते चलूंगा।

Hiçbir

Sunday.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान जो मन में आता है ना कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है ये हो, भी अवीर है। यही प्यार की निशानी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे क्या करते कोई कोई सब।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पर और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, ना जो से मनसे सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Oye, bananas, ahí vine.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सब,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: से आप सबको मुबारक दे रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे?

0: अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है। और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास कि वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। बाप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ। तो ये जो चित्र रख फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh, no, maybe.

0: kill kebab. Sedap betre. Hey betre swarup. Padna nahi padta swarup hi betre ta. To holi ki. Fishes ta jaate. 있으세요앞더블홀이있겠잖아무래도있겠잖아무래 की सबकी है, आप जलाते हो वो भी जलाते हैं। फिर मनाते बिना जलाने के, मनाते नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में money।

0: सजाए मोरत देखने जाते। आप ऐसी मोरत ही श्रेष्ठ पूछे बने, वो तो आपके चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चेतन चित्र देखने जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा मधुबन

servicio. Sé que tenés que pagar eso. Shape.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों किया? मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। लेकिन आगे नहीं करना, लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठ। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी

0: मन के मालिक, जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध पन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे देखेंगे, ये के नहीं चले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: योग लगाते हो, अमृत वेले बैठते हो, लेकिन जाए।

见了。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

लगा देगा।

किस्सा दार रूप में।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: होली मनाएंगे होली आज अच्छा जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प करेंगे। अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, साथ देखी बाप ने, काला है गोरा है, श्याम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तो बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है रखने वाले बच्चे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.

se samastého, jakož černou.

0: tiene y que venga Central en charge, capaba. Tati, capaba. Yankee, tati, capaba.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है वो धोखा बनेगा। आप निश्चिंत रहो, देना आपका काम है, लेकिन सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और ही व्यर्थ संकल्प चलेंगे। आपकी जो जिम्मेवारी है वो आप करो, पहुंचाओ, लेकिन पहुंचाने के बाद पहुंचाना भी रीत पर बन वासी ब्रह्मानो ऊंचो अपने मर्तबे को जान, ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सुन, आपके कर्तव्य को सुनकर और भी सीखे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

tonight.

Coffee.

0: 是主角，保持了一些外面那个多啦可以可以给个人保持那个
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

course, mate.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Some.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हो जाना तो वो पावरफुल हो

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Dream.

Abonnez-vous.

ごちそう。

0: Shake. Bully Monsavata.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी
3: क्या है टाइटल, क्या है मास्टर सर्वश्रेष्ठ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कहीं बच्चे सोचते

0: 想喜欢喝滴滴滴我不是妈妈不妈妈的每个人的那个爸爸给你这是啥Rope me. Sada bachon ke saath rahe. Aise. Vatan mein bhi. Rehte. Bachon ke saath hi rehte. Akele nahi rehte.बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भीबच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप मेंथोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहेSaath nibhati rehti jaise chitron mein dikhati hai na ek ek copy ke saathUnhone Krishna ko dikha diya. Lekin, ye is samay ka gayan hai. Ab avyakt roop mein, har bacche ke saath, jab jaye, jaye raat ko do bache ya nahi bache kisi bhi time saath nibhati rehti saakar mein toSinters par chakkar lagana kabhi kabhi hota lekin ab ab avyakt roop mein to pavitra pravritti mein bhi chakkar lagatiबाप को काम ही क्या है बच्चों को समान बना के साथ ही तो काम है ना, और क्या। तो इसी में ही बिजी रहते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है, कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो करी लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है। दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो। करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

खुशी है कि समय से पहले तो आ गए। फरसे के अधिकारी तो बन गए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारिया, फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशील समय सहन करना पड़ता है। सहनशीलता के देव व देविया होना हो। सदा ये स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। अमर भव का वरदान कब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मांड जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए, जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया की भी भौरूपी रूप की पहचान नॉलेज धारण कर लो। वो डराती है सिर्फ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराती है थोड़ा। डरेंगे कुछ करेंगे तो नहीं, ये तो जानबूझ के करते हैं। ऐसी माया भी बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते है ना तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो। आए माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा के

Esclavos.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने अमरजेंस को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना, इनको साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सके। क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, बिजनेस भी होगा, लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान की इन्वेंशन फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी हैं, उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान कार्य करने में मददगार बनेंगे। तैयार करो इंजीनियर्स को। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे, लेकिन रेगुलर नहीं बनेंगे, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, संबंध में सहयोगी रहते। ऐसी आत्माएं भी तैयार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर स्थूल शरीरधारी, इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले। संस्कार को मिलाना अर्थात फ्रिश्तापन, अगर संस्कार को देख कहीं बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना, कोई कोई के प्यारे नहीं, क्यों कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख के भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी, वाणी बहुत अच्छी है। ये फरिश्ता बनने में ये फिकर आता है, प्यारा भले बनाओ लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो धारण भले करो लेकिन इसके कारण न्यारा बन के सिर्फ प्यारा बनना बोलोग। सर्व का प्यार, हर एक के मेरा अपनापन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सान नहीं होता।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैपन को समाप्त करो। ये सूखे मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Beep, beep.

0: बनने कर तो रही है तो ये तो नहीं है, ये तो कर नहीं है। कहने और करने में अंतर हो जाता, बाप दादा एक दर्श
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मोच जाते हो, मोचना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मोचेंगे नहीं मोचेंगे क्या? अभी नहीं मोच रहे है सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मोच भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज। उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का युग है या मोचने का युग है? क्या है मौज का है? फिर मोचते क्यों? अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मोचना शब्द निकाल लो। निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं, तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में? नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर। पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे? पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते। सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा ये अपना टाइटल याद करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना। अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हसर आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये, बाप बंदा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: और फिश ट्रक के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवा जाने वाले परमात्म साथी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना विश्व के आगे भी विश्व कल्याणी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को
2: परिवार का बच्चा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

siate però, man, what is unscrupulous.

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में

さんとした国家便内情買いぼちき

esta época, que ni que

नहीं करती तो खराब चीज है। तो अगर कोई आपको खराब चीज दे भी तो आप लेंगे? तो जब खराब सब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे, तो जैसे सभी बच्चों से क्रोध

0: Vavna है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी, क्यों
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा कर।

0: क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा ही करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए, चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा पढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे, सर्विस पढ़ने वाली है कम होने वाली नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Copy. Awesome.

Sigurnar Ragnarsson.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ। बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब कंबाइंड है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइंड फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो? बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना, अकेले पर

0: समय सहयोगी शिवबाप परम धाम से आए क्यों है, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी जन्म मेहनत की है ना, क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता।

0: He said he did me. Beach me ye. Apna chat ji karo. Sarva khazane. Jama kitne ki.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर

Or result.

0: और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपने विशेषता सदा काल का बनाना, ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है। बीच बीच में पेपर रामानुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों के लिस्ट में रख, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: यज्ञ में हरेक पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हरेक का पाठ अपना अपना महत्व होगा। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये पाप का वरदान एक एक कामन पाठ दारी को भी जैसे बनाने वाले वाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
4: जुदा ना थे ना जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। बाबा दादी संग सदा रहेंगे, याद में बाबा के सदा मगन। ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो, सफलता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रही है, करना तो पड़ेंगे ही। लोग आपस में उसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: स्रव्यान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्योंकि बाप से दिल का स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह। स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनई बाप का सुनई परिवार का सुनई सुतई बन जाता। क्योंकि बाप समान है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देख। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। इस वर्ष क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना। परिवार का तो है ना, गिरे हुए को गिराओ नहीं। ओ मां को उत्साह बढ़ाओ,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं दे, सदा फेस खुश दे मारे, खुश दे मा रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी पीछे वाले हो जाएंगे, तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा, आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं, एक मास की ट्रेल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती, समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा, तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अल्ला बेला बन छोड़ो, हो जाएगा नहीं, करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है, समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

sociale con Sibat e Mavir Leken Jesse Shastrome some.

मर्सीफुल बनो।

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी इसमें तो पास कि सबके दिल में बाबा की याद कभी भूल भी जाती है, कोई हिसाब किताब के कार। लेकिन मैं जा रही थी थोड़ा भूलती है, मेरा बाबा ये जिगर से याद रहे।

जाकर काम काज करते भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल में मैं, अब मेरे दिल में बाप। ऐसे है ना, हाथ उठाओ, ऐसे पक्का है। वैसे कहते काम काज करते भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ भूलने का ना

0: del mekon. Mere bachche.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Agni Shivadyo Satyam Shivam Sudhyam Shivam Sudhyam.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: चलकर देखे बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता। अब बाप दादा के पास सभी का भूत वाला भी फोटो है। देखो एक यादगार भी है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं कहां से आया कैसे आया और कैसे भगा रही है, ये खेल भी देखते रहे। कोई तो घबरा
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे, जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के कौन थे, कौन है वो बच्चों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इंसान Listen.

सकते हो। हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से उठा।

उन्हें भी हाथ उठाए। उन सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठी है चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं मुबारक के साथ।

すっ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अच्छे वीडियो जो अच्छे वीडियो जो उसमें टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत बिना बिना पोस्ट बदलते रहते, बात देखते रहते हैं, सोचते हैं शरीर बदले, फिर सोचते हैं शरीर माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।